0: List. Gurjeet Suri. Call Gurjeet Suri. 416-627-3111. 416-627-3111.
1: Khushiyan de sang.
2: सुन रहे हो रेडियो प्रोग्राम जिंदगी दे रंग अपनी होस्ट गुरजीत कौर सूरी दे नाल अपने बिजनेस नु प्रमोट करन लई कॉल करो 416-627-3111 416-627-3111

सुन रहे हो रेडियो प्रोग्राम जिंदगी दे रंग अपनी होस्ट गुरजीत कौर सूरी दे नाल। अपने बिजनेस नु प्रमोट करने लई कॉल करो 416-627-3311 416-627-3111।

तो फिर सितारे से ताजमहल पैलेस होटल शिक्षक तुला भेटेल तात इच्छा भोजन मेजबानी मजेदार से सेक्रेटरी हॉल तुला काला घोड़ा पहाड़।

दोस्तों आदाब, ये मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूं। दिमहो तो ये इस कशीरे मतलक जानकारी, यमिच सकाफत, यमिच खूबसूरती, यमिच रिवायत, तो यमिक भाईचारुक मिलजार। दबान मेहमान नवजी मन छे सही कशीर दुनियास मत सरफेस्त। यम ते मेहमान इस साल अनान छे, तिमन छे इस वसवलज इस्तकबाल करान। ये छे सही अख सप्रजनत सपहचान यस दुनियास मत सठा मशहूर छे। इस तो गड़बात जरी चुना सलाह गुड़बोजो ये खूबसूरत बात।

नमस्कार दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना मता मता स्वागत है। मैं हूँ तुंदी अपनी आरजे नेहा शर्मा, डोगरी सोल तुंदे आस्ते ले ही आई हूँ पेशकश डोगरी रेडियो दी। ती मैं आज तुंदे कने अपने एक मने दा बवाल करना चाहनी हूँ। जो ना मैं बड़ी के चीज चुभदी है, बड़ी के अखर दी है, कदे कदे ते मैं निखरी भी ओढ़नी हूँ जदों मैं गल दिखनी हूँ, ते कदे कदे चीजा मेरे भी हथ च नहीं होंदियां, ते बस मन महसूस करिए मैं बड़ा ही दुख होंदा है। मैं सोचा आज की ना मैं तुंदे कन्ने साझा करा, ते मेरे जेड़े सवाल न, की पता तुंदे कन्ने गलबात करदे करदे मैं उन्हें सवालों का जवाब भी थोइया। पहले तो सुनो अज दे एपिसोड दा ये पहला गीत, ओदे बाद मैं अपने मन दे बवाल तुंदे कन्ने कढ़नी आं।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, मता मता स्वागत है तुंदा डोगरी रेडियो च। ते अस गल करा दे है मेरे मने दे बोले दी, ओ जेड़ी मेई बड़ी किचे चुभदी है, दुखदी है, ओ गल। ओ गल ए है दोस्तों कि साड़ी उन संस्कृति च पता नहीं के कमी रही दी गई है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं हा। पहले अस बड़े बजुर्गे दा बड़ा मान सम्मान करदे है, टब्बर च उन्हें बड़ी इज्जत दिंदी जांदी है। पर हुन मान सम्मान ते छोड़ो, उन्दे कन्ने पूरा दिन बोलने वाला भी कोई नहीं होंदा। ते गल मी बड़ी गै अखरदी है, बड़ी भैड़ी लगदी है मी गल। पता नहीं दोस्तों, एक कसूर उन वेस्टर्न कंट्रीज दा आए दा इफेक्ट है कि साड़ी कोई पेरेंटिंग च, साड़े संस्कारें च कोई कमी रही दी गई है कि अज बड़े बजुर्गें दा बड़ा गै तिरस्कार होंदा है। मैं दसी ही नहीं सकनी तुसी कि मैं किन्ना बुरा लगदा है। मैं मन गे मन रोई उठनी हाँ मैं जदों किसी बजुर्ग का तिरस्कार दिखनी हाँ, वो अपने के टब्बर को। पर जदों मेरे हाथ च होंद तो मैं समझानी हाँ टब्बरे की, मैं समझानी हाँ उन्हें लोकें। पर कद कद ये नया भी होंद कि मैं आपे गे चुप रोना पौंद, समा गे वो इन्हें होंद। तुम सुनो अगला गीत।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो सही दोस्तों, पता है कि यूनाइटेड नेशन ने भी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिहाड़ा मनाया। उन्हें भी एक डे इंट्रोड्यूस किया है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस। इस ध्याड़े का मनाने का इंट्रोड्यूस करने का सिर्फ एक ही पर्पस हाँ कि जेड़े साढ़े एल्डर हैं, बड़े बजुर्ग हैं, उनके प्रति जो दुर्व्यवहार होआ करते हैं उसके बारे में लोगों को पता लगे, लोग अवेयर होन, तो वो चीज़ कुदे ना कुदे रोकथाम की जा। तो जोड़ा दुर्व्यवहार है ये कुदे बारा नहीं होंगे, ये इतने के घर के गे अंदर होंगे। जो अस बड़े बजुर्ग इग्नोर करने, नैगलैक्ट करने, अपने कमें च बिजी होने, उनकी खैर खबर तक नहीं लेंगे। वो बेचारे पूरा पूरा दिन कल्ले घर बैठे दे रोंदे, करने कोई काम उनके कोल होंदा नहीं है, शरीर उनका बीमारियों करने वो परेशान होंदे, तो उत्थे गए दुआ अस उन्हें इग्नोर करिए, एक मैंटल प्रैशर भी दें, तो बल्ले बल्ले डिप्रैशन च कन्वर्ट हो ही जाता है। ये सच है दोस्तों। हूँ टाइम हो आता है अगले गीत का।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स। ते मैं गल करा दी ही विश दे जिन्ने भी बड़े बजुर्ग हैं उनके प्रति जो दुर्व्यवहार होंदा है साढ़े अपने के टप्परे च। ते वेस्टर्न कंट्रीज से तुसीं पता है सेक्सुअल अब्यूज का भी शिकार होंदे हैं। फाइनैंशियल प्रॉब्लम भी इंदे कन्ने होंदी हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी इंदे कन्ने होंदी हैं। पर मैं समझनी हां सब तो जड़ा बड़ा प्रॉब्लम बनता है इंदे आस्ते वो बनता है लोनलीनेस। जदों इकल्ले पई जांदे ने, शरीर इंदा साथ नहीं दिंदा है, तो दिमाग च कुदे ना कुदे डिप्रेशन हो जांदा है। कल्ले बेही बेहिए पुरानी गल्लां सोची सोचिए, पर टब्बरे कोल टाइम नहीं होंदा। तो मैं इस रेडियो के माध्यम से सोचा कि मैं तुसीं सारे अपना एक सुनेहा पजा कि प्लीज़ जेड़े बड़े बजुर्ग ने आदर सम्मान दो, जो उनकी जगह है टब्बर चु नहीं उस जगह दो, तो उनके कोल थोड़ा नया टाइम स्पेंड कराया करो। अपने जाते की भी आख्या करो दिने च थोड़ा हरा टाइम कड़ियो।
1: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पांटी बबली का विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जीएनई मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 7 2 V23।
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: ओए ट्रक काला लिया, जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां, की करा?
3: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप, PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
4: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन।
5: इत्थे बी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवें स्टाइल दीआं मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं, 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर खास प्रबंध भी है। जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहंदे हो,
3: कॉल करो जे एन गैरी नू
5: 905-459-5533
3: 905-459-5533
5: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट

0: IPL चल रहा है ओनली ऑन करो स्ट्रीम. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे. आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज.
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा. कॉल 905-460-8888. दैट्स 905-460-8888.
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ.
3: रिच पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली.
4: ओ की कर देने तेरे रिच पीपल,
5: तेरे वांग रोज काम ते नहीं जांदे, डॉलर्स नाल डॉलर्स बना देने. चल एक गल दस, तेरा मिलियन डॉलर्स दा कार पेड ऑफ है, की तेनू काम ते जान दी लोड हैगी है?
4: काम ते जाना ही पैना, डॉलर कित्थों आणगे?
5: बस यही फर्क है, तू डॉलर्स लई काम करदा है ते रिच पीपल डॉलर्स इन्वेस्ट करके बैठ के खांदे ने. जे तुसी भी ऐदा चाहुंदे हो तां हुणे कॉल करो जसविंदर ढिल्लों नूं 416-278-6869 ते.
4: मैं कल ही जाके आना.
5: रिच पीपल अज दा काम कल ते नहीं छड्दे, हुणे कॉल कर 416-278-6869.

आई रियली लव दिस सॉन्ग, बहुत प्यारा गीत है। मैं तुम्हें इस गीत ना छड़दा जा रहा हूँ। मेरा नंबर तुहाडे सारे को है, किसी भी सज्जन ने कोई बिजनेस मैन भी नंबर चाहिए होंगे 6474481000 647 448 1000। लव यू ऑल, लव यू, लव यू, वड्डा वड्डा व्यार।

0: 1530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM
1: 530.
2: 32, 55, 80.
1: 98. एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
2: काउंटिंग नहीं ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828
3: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 square feet दी कॉटेज सेल ते आई है 3 bedroom 2.5 वाशरूम हन हाई एंड दे फर्नीचर नाल फुली फर्निश्ड है $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 feet दा पैड भी बनया है 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट करदी है 12x30 feet दा डेक है प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है मस्कोका रूम भी फर्निश कीता गया है पिछे पानी है अते खूबसूरत है क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होवेगा बीच भी नजदीक है जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222
0: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton

0: अपना टेस्ट फ्रेश प्रोडक्ट्स एट ऑल लीडिंग ग्रोसरी स्टोर्स अपना टेस्ट बाय समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार
2: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
1: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
2: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते
3: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca
4: Mithiai Sweet Factory 173 Glen

0: samosa and sweet factory di taggalle kujore tuma bayaje chare pase to cbi 1850 albion road in rexdale 416213 1165
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार
2: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
1: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
2: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते
3: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca
4: ਸਾਡੀ ਰਿਸ ਕੌਣ ਕਰਨੂ
5: ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਿਤ ਸੁਦੀਸ਼ ਸਵੀਟਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮਿਠਾਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਸਨੈਕਸ
6: ਉਹ ਹੀ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਮਿਠਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਲਾਕਾਂ

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 75 ਪਲੱਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਜ਼ਾ ਡੀਪੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫੁੱਲ ਔਨ ਟੇਸਟ ਦਾ ਕੰਬੋ। 50 ਪਲੱਸ ਟੌਪਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਿਟ ਪੀਜ਼ਾ। ਟ੍ਰਾਈ ਕਰੋ ਸਵੀਟ ਚਿਲੀ ਮੈਂਗੋ ਪੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਪੀਜ਼ਾ।
3: ਜੂਸੀ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸੀ ਵਿੰਗਸ, 25 ਫਲੇਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰੋ।
2: ਲੋਡਡ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਫ੍ਰਾਈਜ਼, ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਫ੍ਰਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਹਰ ਬਾਈਟ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ। ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ pizzadepot.ca ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ।
3: ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ @pizzadepot.ca ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। pizzadepot, ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਟੌਪਿੰਗਸ ਨਾਨਸਟਾਪ।
4: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
5: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा।
6: What's up everybody, this is Jasmine Sandler, ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर।

0: ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣੇ ਹਨ, ਪੋਸਟਰਸ ਬਣਵਾਉਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਈਨਸ, ਬੈਨਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰ ਟਰੱਕ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜ਼ੋਨ ਸਾਈਨਰਾਮਾ, 1625 ਸਟੀਲਸ ਐਵਨਿਊ ਈਸਟ, ਸਟੀਲਸ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਟਡ ਹਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 905-458-5956, 905-458-5956।
1: यारों के साथ जश्न या फैमिली के साथ करना हो जश्न, ढाबा ऑन द फॉल्स आए, टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा।
2: दिल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाप, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स, द बेस्ट फूड इन नायग्रा फॉल्स। LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स, फ्री पार्किंग। विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट, नायग्रा फॉल्स। कॉल 905-358-0864,
1: 905-358-0864, Dhaba on the Falls.
3: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nanda Ji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nanda Ji, 647-822-9607, 647-822-9607।
4: जब सब कुछ तुमने पा लिया, लाइफ को बेटर बना लिया, फिर गुड फ्यूचर अनलॉक करो।
5: टांगरी इंश्योरेंस टीम से टॉक करो, जस्ट कॉल 905-405-1200। टांगरी इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल ग्रुप की टीम में शामिल एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट्स एंड लॉयर्स दिखाते हैं आपको आपकी वेल्थ का फ्यूचर, एंड एस्टेट प्लानिंग करके आपके आने वाले वक्त को बनाते हैं बेमिसाल। टांगरी इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल ग्रुप, सर्विंग यू सिंस मोर देन 35 years। For all your insurance and financial needs, just call 905-405-1200.
4: We calculate and plan, taki zindagi mein ho chain.
6: Looking for a car rental for an insurance replacement, a family weekend getaway, or perhaps a wedding? Visit Zoom Rent-A-Car, the guaranteed lowest price in the GTA. We will beat any competitor's price by

0: गाले कुछ रे तो माँ भैया जे चारे पासे तुसी भी आओ 1850 Albion Road in Rexdale 416-213-1165
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार
2: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
1: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
2: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे इंश्योरेंस

0: हुकूमत अपने अवाम के लिए करती है सब कुछ, राइट। तो पीआर स्टेटस आपका है, प्रोटेक्टेड पर्सन है, आप सिटीजन हैं, चाहे बैरी में रहते हैं, जीटीए में रहते हैं, हैमिल्टन में रहते हैं। हमारे पास पूरी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, 7 ईयर्स से बिजनेस में हैं। सिर्फ हम उन्हीं प्रोग्राम्स में डील करते हैं जो गवर्नमेंट जिनको स्पॉन्सर करती, मीन्स उनकी फीस पे करती है डायरेक्टली टू द कॉलेज। आपकी जेब से पैसे नहीं जा रहे। ऑन अदर हैंड आपको गवर्नमेंट पढ़ाई करते करते लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए फंडिंग देती है 30 से 100,000 डॉलर। वो पैसा जो है ये कोलैटरल फ्री है, सिक्योरिटी फ्री है, कहीं भी आप उसे यूज कर सकते हैं। लिविंग एक्सपेंसेस हर किसी के लिए अलग अलग है, यूज करें। और फंडिंग डायरेक्ट आपके अकाउंट में आती है, मेरे अकाउंट में नहीं आती। और लाइक हमारा प्रॉपर ऑफिस हम टिम हॉर्टन में नहीं मिलते। 7 ईयर्स से हम बिजनेस में बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं। आज की डेट में 30 से 100,000 डॉलर में से हाफ पैसा नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स है। 1 अगस्त के बाद अभी लाइन नहीं सुनेंगे मेरे से, आपसे लोन लोन लोन सुना करेंगे। तो अभी एनरोल करो, पीछे ना रहो। 437-264-31-75 कोई एज लिमिट नहीं है जी। रेज नंबर 2, कोई क्रेडिट चेक नहीं आएगा जी, नो क्रेडिट चेक। और इसमें नंबर 3, डॉक्यूमेंट्स नोटिस ऑफ असेसमेंट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट। और मेन थिंग, सबसे बड़ी मेन थिंग, अगर आपकी इनकम कम है 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट में, और फैमिली साइज अगर मैरिड है या आपके किड्स है, मैरिड विद किड्स, आपको अच्छा बेनिफिट है, तभी आप हमें कॉल करें। इनकम की
1: जी जो आप 30,000 से 1,00,000 डॉलर तक की फंडिंग की गल करते हैं, तो ये कि मिल सकती है, या भी कह लिए कि जे फैमिली ऑफ 5 हसबैंड वाइफ ने, उन्होंने 3 बच्चे आ, तो मिनीम कि फंडिंग हो सकती है?
0: इस केस बारे में आराम 100 बनती है जी, जिसमें से $50,000 नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स है। आज की डेट में सिर्फ 2 बैच रह गए हैं, 1 जून में स्टार्ट है, जून तो शुरू भी हो गया आज, और 1 जुलाई में है। 1 अगस्त के बाद जब न्यू अकेडमी के स्टार है स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें अप टू 100,000 का लोन है। आज अप टू 100,000 की फंडिंग है, जिसमें से 50,000 ग्रांट है। तो इसलिए आप अपने एनरोल करो, पीछे ना रहो। एंड नो एज लिमिट, सोखे जो कोर्सेज में फुली ऑनलाइन है। आप अपने घर के कंफर्ट से 2 से 3 घंटे लगाएं, स्किल हासिल करें, फंडिंग अपने कमेंट तक हासिल करें
1: जी। एक बार नंबर दे दो जी, 2 बार अपना, थोड़ा जा स्लो।
0: हाँ जी, नंबर है जी, फीस आदि फी लगता होगा, फीस में कुछ कैच है, देयर इज नो कैच। फीस हमारी है $199, $499, दैट्स इट। नो परसेंटेज, नो कमीशन, नो कैच। बहुत लोगों को हम असिस्ट कर चुके हैं, हमारी नजर हमारी गुल्लक पे है, आपकी फंडिंग पे नहीं है। तो आप नंबर नोट करें, कॉल करें, ऑफिस आए। नंबर है 437-264-31-75 437-264-31-75 नंबर अगेन 437-264-31-75
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी। 437-264-31-75 यूनी ग्लोबल एडवाइजरी, तुसी इन्हां दे ऑफिस जाके भी गलबात कर सकते हो, हुणे कॉल कर सकते हो राइट नाउ 437-264-31-75 यूनी ग्लोबल एडवाइजरी। अपने स्किल नूं डिवेलप करन दे लई गवर्नमेंट्स कोले ग्रांट्स ने, जिहड़ियां जुलाई च बाद तुहानूं ग्रांट्स नहीं मिलनी, उस तों बाद सिर्फ लोन रह जाणे ने। सो तुसी इह ग्राइंड दा फायदा चक्कण दे लई यूनी ग्लोबल एडवाइजरी नाल राबता कर सकते हो 437-264-31-75। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नागपाल सर।
0: थैंक यू।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਪਰਮਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ। ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਮੌਰਗੇਜ ਤੋਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਉਹ ਤਿਨਕਾ ਭਾਅ ਜੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ ਹੋ, ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ, ਡੈਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 416-675-3024 416-675-3024 ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚਾਲ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। 3 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਆ, 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਸ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਹੱਕ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਆਈ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਪਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਦਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਝਾੜਨੀ। ਐਸੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ,

क्या बात है, क्या चाल है सब दे? उम्मीद है कि तुसी सब ठीक ठाक हो, एंजॉय कर रहे हो इस बड़ी ही खूबसूरत शाम नू। शाम दे विच जुड़ चुके हैं थोड़े नाल एक बार फिर प्रोग्राम पंजाबी लहरां लैके। ठीक 9 बजे तक थोड़ा साडा साथ रहेगा बई। हैप्पी हैप्पी मंडे ते हैप्पी, ओ क्या बात है, 1 जून ओ

0: कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: जे तुसी भी करना चाहुंदे हो अपना खुद दा रेडियो प्रोग्राम तां अज ही सानू कॉल करो 647-504-1557।

वाह यार क्या बात है, वेरी गुड, क्या बात। एंड हुणे हुणे असीं इक वीडियो पाई है टिकटॉक ते, कल दे दलजीत दोसांझ दे शो दी एक व्लॉग कह लो, देखो जाके कमेंट करियो जरूर। पेज है पंजाबी दा ना टिकटॉक ते, PUNJABILEHRAN। किसी ने कॉमेंट किया इट वॉज ऑसम शो, देखियो यार साडिया वीडियो साडे व्लॉग तुसीं इंजॉय करदे हो। मैं करन औजले दे शो दी भी पाई सी, वह भी तकरीबन 50,000 बंदे ने वीडियो देख ली सी। वाह भाई वाह, चकते फटे नवी शाह जा रहे हो पूरा। सो नंबर है 905-673-3337 अपना 905-673-3337। गलबात थोड़ी सारी हो रही है, एक मैसेज आया